ऋण समृद्धि योजना योजना सात में प्रतिफल हाथ में यही 2083 वैशाख 29 गते देखि म्यूचुअल फंड को आवेदन खुले रिलायबल समृद्धि योजना दुई को छिटो में जेठ 1 गते समय यो आवेदन बंद होने त्यसैले मिति याद रख 2083 वैशाख महीना को 29 गते रिलायबल म्यूचुअल फंड को आईपीओ खुलते इकाई में लगानी पूर्ण रूप में जोखिम मुक्त न होने हुआ लगानी करूर्व विवरण पुस्तिका राम्ररी अध्ययन गर्नु होला।

0: World's number one tire brand.
1: Classic Takeoff 16th anniversary offer. Jatima Payu, Ketima Payu. Budget trip package for Paike Rosaiko. Abo Internet TV, the Wi-Fi 6 router, Bani Ketima Payansa. Classic Takeoff, Kune Tani Plan, Kharizma, Hare Khapta. Clean Jana Rai, Clean Magna Internet Bonus. The Master Kate Jana Rai, Hue Bara Hazarko Internet Bonus. Sampalka 980-100-447. Classic Takeoff.
2: के तपाईं हाड, कम्मर, घुँडा, गर्दन दुख्ने समस्या, युरिक एसिड, बाथ रोग, नसा सम्बन्धी समस्या वा अन्य कुनै दीर्घ रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ?
3: यस्ता समस्याको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट सर्वसुलभ उपचारका लागि बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई आदेश सम्झनुहोस्।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओपिडी सेवा,
2: विशेषज्ञ ओपिडी सेवा,
3: निशुल्क औषधि वितरण,
2: सशुल्क फार्मेसी सेवा,
3: फिजियोथेरापी सेवा,
2: अकुपंचर सेवा,
3: योग परामर्श सेवा,
2: क्रियाकल्प सेवा,
3: पूर्वकर्म पञ्चकर्म सेवा,
2: क्षार सूत्र सेवा,
3: जलौका सेवा,
2: अग्निकर्म लगायत अन्य विभिन्न सेवाहरू,
3: प्रयोगशाला सेवा बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म।
2: विस्तृत जानकारीका लागि
3: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय बागमती करिडोर कैरीगाउँ काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-4110-6096 98514-2463।

01-592-2616 वेबसाइट www.obgi.edu.np कोरियन बिजनेस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ओबीजीआई एजुकेशन कंसल्टेंसी नेपाल चावहन चुच्चेपाटी काठमाडौँ।

0: जैस्मिन वर्ल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यह कॉलेज में विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभालाई पहचान करी उजागर करने मदद करते आएको छ। न्यूनतम शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासुन वर्ल्ड कॉलेज साबुन सुसीपाती संपर्क नंबर 9803362382 9803362387
1: युवा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मापे दूतकोशी समावेश विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मापे दूतकोशी को समृद्धि मापे दूतकोशी गांवपालिका सोनकुंड के सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्तों बुधवार सांसो साढ़े सात बजे देखिए आठ बजे समय सुनो एफएम 101.2 MHz ऑनलाइन और सुनो एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुनने सकूंगा। कहाँ पुगे कहाँ पुगे जनप्रतिनिधि को नजर विनियोजित बजेट को काम र प्रभावकारिता नागरिक को गुनासो र सुनवाई समग्र स्थानीय तह को विकास र सिद्धि नेता सोलन गांवपालिका सोलखुंड को सहकार्य में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो नेता सोलन हरेक महीना को पहले सोमवार और अंतिम सोमवार साझे साढ़े सात बजे देखि आठ बजे समय सुनो एफएम 101.2 MHz www.sunoefm को पेज मार्फत विश्वभर सुन सकने नेपाली सेनामा नयाँ सैन्य भर्ना सम्बन्धी सूचना नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रिक्त रहेको सैन्य पदको दरखास्त आह्वान गरिएको हुँदा आवश्यक योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकतालाई नयाँ भर्नाका लागि आह्वान गरिन्छ। स्थान श्री दुर्गापक्ष फोन ओखुढुङ्गा ब्यारेज ओखुढुङ्गा दरखास्त आह्वान मिति यही वैशाख 18 गतेदेखि जेठ 16 गतेसम्म दोब्बर दोस्रो बुसाइ मिति जेठ 17 गतेदेखि जेठ 23 गतेसम्म थप जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 0735 5576 साथ ही भर्ना सम्बन्धी थप जानकारीको लागि यही पुस्तक 18 गतेको गोर्खापत्र दैनिक र नेपाली सेनाको वेबसाइट www.nepalarmy.in मा लगइन गरी हेर्न सक्नुहुनेछ।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उत्तरजिला को मिलन चुकिया।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ रद घटो
3: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
3: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुङ्गा र खोटाङ को डिजिटल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जिनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
3: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
3: ओखलढुङ्गा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजन ओखलढुङ्गा।
2: संपर्क नम्बर 037-590-222 98-52-88-0-222 र 98-42-80-30-00।

0: o rádio no sono é
1: Sonu FM 101.2 MHz. Ujjwal bhavishya ko lagi hamro abhiyan.
2: Sound check. Sonu FM studio time.
3: 3 PM.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुपी नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू
2: नमस्कार मदन पौड़ियाल उज्यालो रेडियो नेटवर्क

0: 우리 시네마 루야 쏘이며 불렀으니 미시시나 नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रिक्त रहेको सैन्य पदको दरखास्त आह्वान गरिएको हुँदा आवश्यक योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकतालाई नयाँ भर्नाका लागि आह्वान गरिन्छ। स्थानीय दुर्गापोक फोन ओखुढुङ्गा ब्यारेज ओखुढुङ्गा दरखास्तको आह्वान मिति यही वैशाख 18 गतेदेखि जेठ 16 गतेसम्म। दोब्बर दोस्रो घुसाई मिति जेठ 17 गतेदेखि जेठ 23 गतेसम्म। थप जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 0 35 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1: गोर्खापत्र दैनिक र नेपाली सेनाको वेबसाइट www.nepalarmy.in मा लगइन गरी हेर्न सक्नुहुन्छ।

कार्यक्रम आपने पाखा अपनी धाका को साथ में सागर इलेक्ट्रॉनिक सेंटर एंड मोटरसाइकिल वर्कशॉप सोलू दूधकुंड नगर पालिका 0.5।

0: সম্পর্কে রোকমরা কবারি সাবুক নম্বর একিম গড়ে সম্বন্ধে সূচনা আদরণীয় সেবাগ্রাহী মহানুভাবহরু তপাইলে আপনো সওয়ারী সাধনকো বার্ষিক রূপমা বুঝাউনু পর্ने সওয়ারী কর নবীকরণ বস্তুর লগায়ত অন্য কর সম্বন্ধী বিতরণ হেরনকা লাগি সম্বন্ধিত যাতায়াত কার্যালয়মা গেলে কর প্রিন্ট মাগ্ন ব্যাঙ্ক ভোচার গর্ন অগি সওয়ারী কর তথা বস্তুর একিম গর্ন তথা কর বুঝাইপছি প্রাপ্ত হুনে বিমা আফুলে বুঝাইকো করকো রকম র আফু সওয়ারী নম্বর একিম গর্ন হুন এসেই সূচনা মার্ফত অনুরোধ গরিছ। उत्तर प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय फिराक
1: मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौं सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौं मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना नियमित दिने गरौं मौसम पूर्वानुमान को जानकारी नियमित रूप में लिने गरौं प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सचेत बनाऊ जलवायु परिवर्तन का असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं वन संरक्षण वृक्षारोपण में सक्रिय सहभागिता जनाऊ ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जा को प्रयोग बढ़ाऊ वातावरण प्रदूषण नियंत्रण में जिम्मेवार बनाऊ वातावरण संरक्षण करौं जीवन रक्षा करौं।
2: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश
0: बालबालिकालाई लागु औषध दुरूपयोग लागु औषध सामाजिक अपराध हो कोही कसैले प्रयोग नगरौं बालबालिकालाई लागु औषधको प्रयोगबाट टाढा राखौं बालबालिकाको संगतमा ध्यान दिऊ लागु औषधबाट हुने हानि र कानूनी परिणामको बारेमा जानकारी दिऊ बालबालिकासँग नियमित संवाद गर्ने गरौं बालबालिकालाई घरमा माया र समय दिने गरौं विद्यालयमै जीवन उपयोगी शिक्षा दिने गरौं बालबालिकाको सकारात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
0: सवारी साधनको इन्जिन र चेसिस रूपकरण सम्बन्धी सूचना आदरणीय सेवाग्राही महानुभावहरू तपाईले आफ्नो सवारी साधन नयाँ खरिद गर्दा नामसारी गर्दा सवारी साधनको इन्जिन र चेसिसको अवस्था रुजु वा अन्य कुनै कैफियत भई नभएको रुजु गरेर मात्र खरिद बिक्री गर्नका लागि यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ।
1: उत्तर प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी
1: Time check. City FM. Studio time.
2: Excited, Jim.
0: साथ डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलुदुतु नगर पालिका 5 सोलुकुम्बु

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली।

रोगादे सुगेदान घ्यामसे रंगनेला घाचा कोर्गी ताम पंगे मान्छे परमेश्वरला सेवाला लागिरी रंगनेला सहयोग मान्छे रिला थेता दिग हिन्न विषम रंगनेला प्रार्थनाला सहयोग दिन भेटी मान्छे आशा लाभमुला रंगनेला चु जदाबा भेटिदा मान्छे परमेश्वरला मिन्दी किन्छलामुला।

0: रोगादे रंगसी दन्दे बर्खर ग्यान्सी बनमुला मार्गदर्शन गेदाङ रोगादे तिनील चु गेदाङ रंगनीदा खरङब नम्जी तुदे चु गेदाङ ग्यान्सी रंगनीदा तिकै खुल्दुली ताबा मुसाम रंगनीला पत्रला नुन्छे आसलसी जीवमुला रंगनीला सल्ला कुइखला कुइका सियोला विवाह रंगनीदा आनन्द जन्ममुला तुदे रंगनीला प्रार्थना लदुब विषय दुगु मुला विषम रंगनीसी कुइका सियोगु विवाह नन्ना जन्ममुला रंगनीदा नन्ना चु गेदाङला ठेगाना चुरंग मुला
1: कार्यक्रम मार्गदर्शन जीपीओ नम्बर 8975 ईपीसी 2561 काठमाडौँ नेपाल इमेल आईडी twrnepal@yahoo.com एसएमएस लागेरे 98473 35679 98473 35679
0: लसो रोदुगु तिनी इचु गेदाङ यासेङनि हेसी निबनमला दोषी खाबा चुनुन दुईरी रंगनी लंगोनसांगले रूप्त बरी खाला विवा बाच्च लवन नई चुग्याम फेसिनेला लसो फ्याफुल्ला

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: Sound check. City FM. Studio time.
4: It's 7 p.m. Start to start with.
5: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वनामय अफसेट प्रेस सोलुखुम्बु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: कहाँ जान लागो तिमीहरू? अनि रमिला के भयो, किन रोकी तिमी? के भयो के भयो के भयो?
1: मम्मी सबै बहिनीलाई लगेर स्टेसन जानु,
0: अनि त
1: मलाई कसैसँग माफी माग्न जानु छ।

0: ओपन वर्ल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यो कलेज ने विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभा पहचान करी उजागर कर मदद करते आयो शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासु वर्ल्ड कॉलेज साबुन सुसिपाटी संपर्क नंबर 9803623 82 9803623 87
1: और प्रिंस मुजुकर को रोकम तवारी साबुन को नंबर एक गणेश संबंधी सूचना आदरणीय सेवाग्राही महानुभावर तपाईले आफ्नो सवारी साधन को वार्षिक रूप में बुझाउन पर्ने सवारी कर नवीकरण दस्तुर लगायत अन्य कर संबंधी वितरण हेर्न का लागि संबंधित यातायात कार्यालय में गएर कर प्रिंट मांग्न बैंक भोचर गर्न अघि सवारी कर तथा दस्तुर एकिन गर्न तथा कर बुझाएपछि प्राप्त हुने बीमा आफूले बुझाएको कर को रकम र आफ्नो सवारी नम्बर एकिन गर्न हुन यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय पीड़ित मौसम संबंधी सही सूचना प्राप्त गरौ सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौ मौसम तथा जलवायु संबंधी सूचना लिने र दिने गरौ मौसम पूर्वानुमान को जानकारी नियमित रूप में लिने गरौ प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सचेत बनाऊ जलवायु परिवर्तन का असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौ वन संरक्षण वृक्षारोपण में सक्रिय सहभागिता जनाऊ ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जा को प्रयोग बढ़ाऊ वातावरण प्रदूषण नियंत्रण में जिम्मेवार बनाऊ वातावरण संरक्षण करौ जीवन रक्षा करौ।
2: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश
1: बालबालिकालाई लागू औषध दुरूपयोग हटाउँछ लागू औषध सामाजिक अपराध हो कोही कसैले प्रयोग नगरौ बालबालिकालाई लागू औषधको प्रयोगबाट टाढा राखौ बालबालिकाको सुन्दरतामा ध्यान दिऊ लागू औषधबाट हुने हानि र कानूनी परिणामको बारेमा जानकारी दिऊ बालबालिकासँग नियमित संवाद गर्ने गरौ बालबालिकालाई घरमा माया र समय दिने गरौ विद्यालयमै जीवन उपयोगी शिक्षा दिने गरौ बालबालिकाको सकारात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गराउँ।
2: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
1: उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गरौ नस्तरी वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरी उपभोक्ताको अधिकारको रक्षा गरौ कारोबारमा बिल विशोक लिने र दिने गरौ कारोबारलाई पारदर्शी बनाऊ नाफाको उद्देश्य झुटा भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना नदेऊ वस्तु सेवाको मूल्य मात्रा म्याच सकी नीति गुणस्तर एकिन गरी मात्र खरिद बिक्री गरौ वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट कुनै हानि नोक्सानी भए स्थानीय प्रशासनमा उसुरी गरौ वस्तु तथा सेवाको प्रयोगबाट स्थिति पुगे क्षतिपूर्तिमा गौ निष्पक्ष तथा तथ्यपूर्वक सूचना पाउने उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गरौ भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचनाको कारण उपभोक्ता ठगिएमा स्थानीय प्रशासनमा उसुरी गरौ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
3: सधैँभरि रोजे।

0: ন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড কলেজ, শান্ত তথা অনুশাসিত শৈক্ষিক বাতাবরণ, উৎকৃষ্ট ভৌতিক পূর্বাধার, দক্ষ শিক্ষক শিক্ষিকা, আইএসও সার্টিফাইড, অতিরিক্ত ক্রিয়াকলাপ, সাথে এই কলেজে বিদ্যার্থীমা রয়েছে অন্তর্নিহিত প্রতিভা পহচান করে উজাগর কর মদত করতে আগে শুল্ক গুণস্তরীয় শিক্ষা ন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড কলেজ সাধন সূচীবাদী সম্পর্ক নম্বর 9800362382 9800362387
1: युवा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मात्य दूतकोशी समावेशी विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मात्य दूतकोशी को समृद्धि मात्य दूतकोशी गांवपालिका सोनपुंड को सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्रो बुधवार सांझ 7:30 देखि 8 बजे समय सुन्न एफएम 101.2 मेगाहर्ज अनलाइन र सुरु एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ कहाँ पुग्यो कहाँ पुगेन जनप्रतिनिधि चुन्छ विनियोजित बजेट को काम र प्रभावकारिता नागरिक को गुनासो र सुनवाई समग्र स्थानीय तह को विकास र सिद्धि नेत्रशल्यन गांवपालिका सोलुखुम्बु को सहकार्य में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो नेत्रशल्यन हरेक महीना को पहिलो सोमवार र अन्तिम सोमवार 7:30 देखि 8 बजे समय सुरु एफएम 101.2 मेगाहर्ज www सुरु एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ नेपाली सेनामा नयाँ सैन्य भर्ना सम्बन्धी सूचना नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दीभित्र रिक्त रहेको सैन्य पदको दरखास्त आह्वान गरिएको हुँदा आवश्यक योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकतालाई नयाँ भर्नाका लागि आह्वान गरिन्छ स्थान श्री गुम्कापोक फोन ओखुढुङ्गा ब्यारेज ओखुढुङ्गा दरखास्तको आह्वान मिति यही वैशाख 18 गतेदेखि जेठ 16 गतेसम्म दोब्बर दोस्रो पुसाई मिति जेठ 17 गतेदेखि जेठ 23 गतेसम्म खास जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 0735 5563 साथ ही भर्ना संबंध खोज जानकारी